जी हाँ, बारंबार प्रणाम है. सो ऑफ कोर्स वी डू द सेम ऑन जन्माष्टमी एंड वी आर गिविंग यू स्पेशल सॉन्ग्स अबाउट कृष्ण कन्हैया. एंड इफ यू लाइक मी टू प्ले योर फेवरेट सॉन्ग फॉर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन थीम, प्लीज फील फ्री टू गिव मी अ कॉल. एंड you know, once in a while I'm going to throw in some trivia questions and some classics to contemporary songs about the topic that we have. We have several topics to play songs on. Labor Day we started, of course, Janmashtami is another one. The school, going back to school is another one. Well, you figure out other topics going around this time of the year, by all means, and suggest some songs.

0: Thanks, friends. We are coming back with some more of your special program. Every program is a special program because we try to give special tributes to the special personalities who made the world of music and world of memories and melodies in our childhood. And also community events like Janmashtami Festival going on all over things like that. We try to dedicate our program to, and of course we dedicate to the dedicated listeners like you. So thank you very, very much for paying attention and communicating with us and even sharing some information that we like to have from you, because after all life goes on. These memories and melodies stay on with us forever. Anyway, let's go back to the Krishna Kanaya for Janmashtami. And you have to tell me, I'm still waiting for someone to give me a call and let me know what was the earliest, the longest, I mean the oldest song in Hindi cinema. That is the question, trivia question going on for our special Janmashtami program. Well, friends, this is Glimpses of India. Bharat Darshan Radio comes to you every Sunday, 3 to 5, sometimes not 5, like today it might be earlier. But anyway, Dev Joshi here at your service, and we hope to bring you more of your favorite songs. So let me play this song, and let's see if you remember this particular song. And tell me the name of the film, if you like.
1: काम सी वो जो तुम्हारे पास बैठी है
2: अरे बदतमीज अंधे चक्कू को तलवार बोलता है मुझे शर्म कर दे शर्म शर्म कर
3: ये शर्म नहीं चले थोड़ा ना चलाती हूँ गाड़ी
4: ये देखकर हमें आनंद होता है कि हर साल दूर दूर से कलाकार अपना अपना कमाल दिखाने हमारी बस्ती में पधारते हैं आज की सभा एक नर्तकी के नाच से शुरू होगी संगीत की बाजी में देश के माने हुए साजिंदों को खुला लेता है राज लक्ष्मी तुम्हें आज्ञा है संगत कौन करेगा
5: क्षमा कीजिए महाराज कल की छोकरी की संगत हमें शोभा नहीं देती
3: कल की छोकरी अगर लय ताल में पीछे रह जाए तो घूंघरू बांधना छोड़ देगी
6: भाई जी सुर ताल समझती हो भाई जी
3: इसका जवाब मेरे पैर देंगे
6: महाराज मैं संगत की आज्ञा चाहता हूँ
4: साज कौन सा रखोगे
6: साज और आवाज दोनों होंगे महाराज
3: महाराज मैं इस मूर्ख की संगत नहीं चाहती
6: अरे दरबारी कांगड़ा और मारू बिहाग में जय जयवंती की झलक देखी है धुरपत धम्मार में शुरू हुआ भाई जी तो धा नहीं पकड़ पाओगी धा महाराज मुझे लगता है कन्या डर गई
3: आज्ञा दीजिए महाराज फिर आपके सामने ही फैसला हो जाए
4: इस चंचल बालक के लिए मन में क्रोध मत लाओ राजलक्ष्मी संगीत
0: Let's go to the song.